पल पल में शामिल है, वो कौन है?

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieta la murga. Milci, murga.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रही हूँ, हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
1: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
2: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
3: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ, अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन। अ वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
3: यस सर,
1: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
3: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपकी
1: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
3: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
1: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
3: राइट सर?
1: जब मैंने उसको मना किया तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
3: सर
1: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
3: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
1: मैं
3: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का आजा फोन।
2: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
2: यस सर।
1: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
2: सर कौन?
1: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
2: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
1: यार,
2: भी
1: क्या
2: मैं
1: नहीं होता यार।
2: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर, आपके कहने से हम तो ये
1: फोन आ रहे हैं बराबर, मेरे को गालियां दे रहे हैं।
2: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
1: झूठ बोल रहे हो तुम लोग,
2: ऐसी गलतियां आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरे ही हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: ओह यार तुम लोग ना।
3: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
0: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर इज केआर के, देयर इज करण जौहर एंड देयर इज काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
3: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
2: बिकॉज दैट्स द गेम. हमको दो लोगों को तो बचाने ही पड़े.
3: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
2: ऐसा ही हूँ मैं.
3: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
2: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: खटखट
1: हु दैट
0: अखबार
1: अखबार हु
0: अरे अखबार बता दिया है बार बार नहीं ना बता पाएंगे
1: खटखट हु दैट
2: Only on 89.6 Mirchi 1.
3: Mirchi, it's hot.

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर, सर मुझे बात करनी है आपसे। ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
0: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vieva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोलिए
3: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
2: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
3: अच्छा वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
2: मैंने बीए किया है।
3: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाह रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
2: पर क्यों?
3: नहीं मैं ऐसी पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
2: लेकिन क्यों हील? नहीं तो आपको पूछना क्या है, बताइए।
3: नहीं मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या? आप नहीं पहनती? मैं
2: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
3: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
2: ज्यादातर
3: ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
2: क्या बात कर रहे हैं आप?
3: नहीं मैं ये कह रहा हूँ, इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे, अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना। लड़के की बड़ी ख्वाहिश है, बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर ली, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़का भगा के करना चाहते
2: हैं। मेरी बात सुनिए
3: दोबारा, एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
2: हेलो
3: देखा, आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या
2: है?
3: नहीं मैं दोबारा फोन, मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
2: नहीं बकवास।
3: अच्छा फोन मत काटिए, मेरी बात सुनिए रेखा।
4: रेखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
2: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
4: नहीं मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
2: नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी।
4: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
8: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
9: हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut, cut.
6: Who there?
5: Whom are you?
6: Whom are you who?
5: Aray, whom are you looking for, madam?
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है, तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
2: साले का खोपड़ी तोड़, साले।

0: Nilci. Iskabara, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua, la burga.
1: Nilci, burga. हेलो
2: उसको पेरों को पीछे लगा के उसको को आगे करो।
3: हेलो
1: हाँ जी,
3: ये भाई साहब ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पेरों है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
2: अरे बेकार आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने। दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
4: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
4: ठीक है,
3: ठीक है। इसमें मेरी अभी तो आप तो लिखी
4: है, मॉडल
3: मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
4: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह। और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किसी तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म। मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी, कुछ था।
1: हेलो
3: हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हो भाई साहब?
1: अजय शर्मा।
3: अजय जी, ऐसे मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
1: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसके आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी। मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं, 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
1: चोरी की है क्या?
3: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
1: देखना पड़ेगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
1: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
1: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
1: अरे सर ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुकिए।
2: अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
1: शाम को बताता।
3: नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
1: क्या कर रहा हूँ, शाम को फोन करके बताऊंगा।
3: अजय जी, ऐसा है ये जितनी गाड़ियां है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: जस्सी।
1: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
0: जस्सी हु हैज कम आंटी जी।
1: खट खट, हु दैट?
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: ओ मैन, ये तो बहुत टायरिंग है। तू कैब चलाना छोड़ दे भाई एंड डू सम अदर जॉब।
1: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची 1 कतर।

0: Mirchi. Iskaba na puskaba na sakaba na. Rambala. Burga, burga. Na vidba la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी।
1: हाँ जी
2: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए?
1: सर्विस के लिए जीती?
2: हाँ सर। सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
1: 40,000 रुपए?
2: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
1: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
2: नहीं तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप ये आप देखा है ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
1: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
2: नहीं सर,
1: वर्कशॉप में दी है कबाड़ी वाला, समझ नहीं आ रही मेरे।
2: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
1: जी,
2: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी, बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
1: अच्छा,
2: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
1: पागल हो गया है तू क्या?
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 40,000 सर ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
1: हैं? ठेका ले रखा ट्रेन की पटरी।
2: मैं आपको
1: बात की बात नहीं है मेरी, सुन तो
2: मैं
1: कोर्ट से लेके सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। छोटू जाएंगे ट्राई लेने, छोटू का काम क्या है? गाड़ी ड्राइव करेगा?
2: अच्छा सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
1: नहीं।
2: सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
1: सर सर सर सर सर,
3: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका
1: सर, थोड़ा
3: सा
1: मिल गया। मैंने कहा
3: मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: बातों में
1: लुट कोई बातों में देखे कोई प्यार से
0: कौन मैं
2: हाँ तुम बस तुम

0: कौन? मैं?
1: हाँ तुम।
0: बस तुम?
1: ओफो।
0: कौन मैं?
1: हाँ तुम।
0: बस तुम?
1: ओफो।
2: मिर्ची स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
1: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
2: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरी आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूं?
1: अरे तो आवाज को अपना कंफर्म टिकट दिखाओ, उसको बोलो खड़ी हो

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरी आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूं?
1: अरे तू आवाज

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोलिए
3: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
2: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
3: अच्छा वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? आप थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
2: मैंने बीए किया है।
3: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाह तो रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
2: पर क्यों?
3: नहीं मैं ऐसी है पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
2: लेकिन क्यों? हील नहीं, तो आपको पूछना क्या है बताइए?
3: नहीं मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती मैं?
2: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
3: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
2: हाँ ज्यादातर नहीं।
3: हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
2: क्या बात कर रहे हैं आप?
3: नहीं मैं ये कह रहा हूँ, इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे। अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम लड़के भगा के करना चाहते
2: हैं। मेरी बात सुनिए
3: दोबारा, एक कमाल है अभी से भाग गई यार।
2: हेलो
3: देखा, आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या है?
2: मैं
3: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
2: नहीं बकवास।
3: अच्छा तो फोन मत काटिएगा, फोन मत करिएगा, मेरी बात सुनिए। रेखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
2: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
3: नहीं मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से तो नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
2: नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी।
3: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
2: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: में जी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
2: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उसपे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
1: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कौन है?
4: स्टेन।
3: स्टेन कौन?
4: स्टेन कर दिया मेरे बैंड को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
5: खट खट, हू दैट?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये पानी पूरी वाला हर बार सूखी पूरी का एक्स्ट्रा चार्ज करता है, क्या करूं?
1: अरे कोचू, पानी पूरी गीली होती है, तू सूखी मांगेगा तो वो सुखाने का एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Kahve Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Burga. Na bir bala burga.
1: Mirci burga. हेलो
2: उसको पेरों को पीछे लगा के उसको स्टीम को आगे करो।
3: हेलो
1: हाँ जी,
3: ये भाई साहब ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पेरों है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
2: अरे बेचारा आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए वहाँ से, गाजियाबाद से उसने। दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
4: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
4: ठीक है,
3: ठीक है। इसमें मेरी अभी तो आप तो लिखी
4: है, मॉडल
3: मॉडल आप लिख लो इसका। ए, एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
4: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किस तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म। मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी, कुछ था।
4: हेलो
3: हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे भाई साहब?
4: अजय शर्मा।
3: अजय जी, ऐसा है मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
4: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
4: उसी।
3: मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं। अच्छा। 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
4: चोरी की है क्या?
3: हाँ वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
4: सारे मुझे देखना पड़ेगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
4: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
4: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
4: अरे सर ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुकिए।
2: हाँ अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे? नहीं आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
4: क्या करूँ मैं, शाम को फोन करके बताऊँ।
3: अजय जी ऐसा है, ये जितनी गाड़ियां है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
6: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: अजय देवगन, फर्ज करते हैं माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर्स केआरके, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
2: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
1: Because that's the game. आपको दो लोगों को तो बचाने ही पड़ेंगे.
2: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
1: ऐसा ही हूँ मैं.
2: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
1: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: खट खट।
1: कौन है?
0: ईशांत।
1: ईशांत कौन?
0: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत।
2: खट खट हु दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
0: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है, तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vidva la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Sir, very good evening. Me bank se bol rahi hu. Hamari ek scheme aayi hai. Kya aap lena chahenge?
2: Lekin mujhe nahi chahiye.
3: Okay, sir. बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद. कहीं का
4: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ. अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन.
5: वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: बात बताओ. इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी.
5: यस सर.
2: जरा उनसे बात कराइए मेरी.
5: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है. मैं आपके
2: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
5: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं.
2: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में.
5: राइट सर.
2: जब मैंने उसको मना किया तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर.
5: सर
2: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
5: सर आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
2: बात कर रही हूँ.
5: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को. बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद. कहीं का आजा फोन.
3: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था.
3: यस सर.
2: मेरे को गालियाँ दे जा रहा है यार वो.
3: सर कौन?
2: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है.
3: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
2: यार,
3: भी
2: क्या
3: मैं...
2: नहीं होता यार.
3: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर आपके कहने से. हम तो ये
2: फोन आ रहे हैं बराबर, मेरे को गालियां दे रहे हैं.
3: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है. ऐसी गलतियां बाइंदा नहीं होगी सर. बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद. मुर्गा कहीं का.
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरे ही हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
2: यार तुम लोग ना
5: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ हंस के बोल दीजिए.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पटा.
7: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
6: और एड ब्रेक भी. मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है।
6: इरशाद इरशाद

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: कौन है?
4: दवे.
5: दवे कौन?
4: The way you love me. I हाय मर जावा.
5: Cut, cut. Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची। बताओ सवाल क्या है?
1: सर, सर मुझे बात करनी है आपसे। ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
0: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

क्या हाल चाल कतर वालों? मिर्ची ईशा, जी हाँ मिर्ची ईशा आ चुकी है। आफ्टर सो लॉन्ग आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन यस देर आई दुरुस्त आई ना, तो भाई मैं दुरुस्त अच्छे से आई हूँ आपको बताने। इस हफ्ते के शोज इवेंट सब कुछ बताऊंगी, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज कतर में हो रही है एंड ऑल्सो अबाउट द कतर योर ब्यूटिफुल सिटी, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और कतर से रिलेटेड वो हर बात जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है वो सब बताऊंगी ऑन माई शो। बस उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। अब सिलसिला जारी रखते हैं हमारे नए सीजन का, यानी कि मिर्ची वीकेंड वाइब्स का। आपको बताऊंगी सब कुछ कतर में जो भी हो रहा है, होने वाला है सब कुछ ऑन माई शो। तो मेरे साथ बने रहिए, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी।
2: हाँ जी
3: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए
2: जीती?
3: हाँ सर। सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
2: 40,000 रुपए?
3: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
2: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
3: नहीं तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप ये आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
2: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
3: नहीं सर,
2: वर्कशॉप में दी कबाड़ी वाला, समझ नहीं आ रही मेरे।
3: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
2: जी,
3: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी, बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
2: अच्छा,
3: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसका 40,000 दे रहा है।
2: पागल हो गया है तू क्या?
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा
2: हूँ,
3: 40,000
2: बकवास कर रहा है
3: सर। ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
2: हैं? पटरी ठेका ले रखा
3: है
2: ट्रेन की पटरी।
3: मैं आपको
2: बात की बात नहीं है, मेरी सुन तो। कोर्ट से लेकर सब सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। आज छोटी जाएंगे ट्राई लेने, रोटी का काम क्या है? गाड़ी ड्राइव करेगा। अच्छा
3: सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
2: नहीं।
3: सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
2: सर सर सर सर सर,
4: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो में चीज़ नवेद बोल रहा हूँ सर, मुर्गा बन गया है आपका।
2: पूरा
4: दिन सबिल
2: गया, मैंने कहा क्या हो गया यार मेरी गाड़ी को।
4: हाँ बस
2: ठीक है,
4: मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and the Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
7: Ja Simran, ja jee le apni zindagi. Ja beta, ja.
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची 1।
9: इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल।
11: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: के आगे हम और क्या कहे जानम समझा करो आप लोग भी समझ गए होंगे इस गाने से कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। एक ऐसी मीठी आवाज जिन्होंने हमें हर जनरेशन में एंटरटेन किया है, अपनी सोलफुल वॉइस से हमें वो गाने दिए हैं जो हमारे जहन में आज भी हैं। तो बस उन्हीं को एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, एक सोलफुल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है आशा भोसले जी को हिनात सलमा फार्म में, जहाँ पे आप जाके इंजॉय कर सकते हैं उनके गानों को। और देखिए, जाना तो बनता है एक ट्रिब्यूट एक ऐसी आवाज़ के लिए जिन्होंने हमेशा हमें एंटरटेन किया और इतने खूबसूरत गाने दिए। ये हो रहा है 8th of May, यानी कि आज। जल्दी से जाके अपनी बुकिंग करवा लीजिए www.hinatsalma.earth पे अवेलेबल है टिकट्स, आप वहाँ जाके बुक करवा सकते हैं। एंड 6:30 PM टू 8:45 PM तक ये चलेगा, आप इंजॉय कर सकते हैं। जब ऐसे मौके मिलते हैं ना तो ज़रूर जाना चाहिए, उनकी जो कला है ना उनको रिस्पेक्ट करते हुए ज़रूर ये एक एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो जाइए ज़रूर और इंजॉय करिए मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 107।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes wow.
3: Swag, style aur non-stop dancing ke liye taiyar ho jao.
2: Add it, turn it up and don't sit now. Just go wow.
3: Wow! Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपर हिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
2: 89.6
3: मिर्ची फ्रेश माल।
4: ग्रूवी फील और कैची वाइब के साथ सुनो जब तलक।

गाने को गाया है अरिजीत सिंह और अकासा ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

जो कला होती है ना वो कोई उम्र नहीं भालती है। वो भालती है सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त और आपकी कंसंट्रेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी ही एक वर्कशॉप की, ड्राइंग फॉर अडल्ट्स। यस, ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए ड्राइंग वर्कशॉप है, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपका जो हिडन टैलेंट है, या बोल सकते हो कि आपको जो करना बहुत पसंद था कुछ ज़माने में और आप अपनी उस हॉबी को छोड़ चुके हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अगेन। जी हाँ, ये वर्कशॉप होने जा रही है एजुकेशन सेंटर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में। मे 10th से मे 13th तक है ये, एंड 4 PM टू 6 PM आपको टाइमिंग्स पर पहुंचना पड़ेगा, एंड एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपके अंदर भी वो कीड़ा है ना कि भाई वो ड्राइंग करना है, बचपन में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, आपकी पुरानी जो फाइल्स हैं, जो आपने स्टिल पेंटिंग्स करी हैं, लाइव पेंटिंग्स करी हैं अपनी 11th 12th में, फाइन आर्ट्स लिया था कभी, कुछ किया था, उन सबको ना वापस लेके आइए। अपने अंदर का जो क्रेज है ना, बच्चा है, जो आपने उस समय जिया था, उसको दोबारा जीने का मौका दे रहे हैं आपको। जी हाँ, इस वर्कशॉप पे जाइए और एंजॉय करिए नई नई टेक्निक्स और नए तरीके ड्राइंग करने के। सो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर अपडेट्स विद मी, दैट इज मिर्ची ईशा, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वैन इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखिए, जो इंसान करे बीवी से प्यार, वो उसको कैसे करे शॉपिंग से इनकार। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि भाई शॉपिंग के बैग्स आप लोग सभी तैयार रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जीबिशंस के झरने बहने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी ही एक एग्जीबिशंस की, जिनाथा एग्जीबिशन, जो हो रही है आपके कतर में अल हजम में। एंड ये May 6th से लेके May 13th तक है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि कतर में ब्यूटी एक्सेसरीज जो भी देखना चाहते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड आप देखेंगे कि इट्स सोफिस्टिकेटेड, इट्स अ वेरी classy exhibition where you will find the things which are very unique and prominent, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं इस वीकेंड कुछ अलग करने के लिए, तो अल हजम जाइए और जाके जिनाथा एग्जीबिशन को एक्सपीरियंस करिए। टोटली एंट्री फ्री है एंड एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। यस, डेफिनेटली जो हमारे कतर की जो एग्जीबिशन होती है, दे आर नेक्स्ट लेवल, दैट वी ऑल नो। बस उसी का बढ़िया सा एक्सपीरियंस करना है तो इस वीकेंड जरूर जाइए। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 Mirchi One is hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट।
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
5: खट खट हो दैट
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, थक जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ओ मैन, ये तो बहुत टायरिंग है। तू कैब चलाना छोड़ दे भाई एंड डू सम अदर जॉब।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

इतनी शिद्दत से आप एक बॉल के पीछे भागते हैं, भागते भागते भागते उसको फिर किक करते हैं, अपने से और दूर भगा देते हैं। वाह क्या ही गेम है यार, मैं बात करूँ फुटबॉल की यार। एक ऐसा गेम जो कतर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लोग बहुत ही एक्साइटेड होके इसके सारे मैचेस देखते हैं, लाइव देखना चाहते हैं या ऑफलाइन भी देखते रहते हैं। तो क्रेज जो है दैट इज नेक्स्ट लेवल हमारे कतर में। तो अमीर कप फिनाले हो रहा है आपके कतर में, दैट इज फॉर 2026 एंड ये हो रहा है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा में। एंड इसके टाइमिंग्स 5:30 से लेके 7 PM तक हैं, तो भाई जल्दी से जाके ना अपनी टिकट्स बुक करवाएं। और टिकट्स अगर आपको बुक करवानी है तो आपको जाना होगा www.qfa.qa पे और जाके फैमिली फ्रेंड्स सबकी बुकिंग करवाइए, इंजॉय करिए वीकेंड भाई, चिल मारिए। फुटबॉल मैचेस को मैंने भी लाइव देखा है, मैं गई थी देखने, दैट वॉज इंडिया वर्सेज उज्बेकिस्तान। हारा था इंडिया लेकिन द फीलिंग यू नो द बैटल ग्राउंड वॉज सुपर टूपर एनर्जेटिक। और जब आप उसकी एनर्जी को फील करते हो तब आपको मज़ा आता है, क्योंकि जो वो जो धरती होती है ना उस समय दड़ दड़ दड़ दड़ कर रही होती है विद द ऑल शाउट आउट फॉर यू नो द फुटबॉल लवर्स एंड एवरीथिंग। यार क्या मज़ेदार होता है, जल्दी जाके ना एक बार तो ज़रूर जाइए और इन्जॉय करिए। और बाकी सारे इवेंट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची शाह को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. Burka. Nafiyat bala burka. Mirchi burka.
1: हेलो
2: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोलिए
2: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
1: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
2: अच्छा, वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
1: मैंने बीए किया है।
2: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
1: पर क्यों?
2: नहीं, मैं ऐसी पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
1: लेकिन क्यों हील? नहीं, तो आपको पूछना क्या है, बताइए।
2: मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
1: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
2: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं?
1: हाँ, ज्यादातर नहीं।
2: हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे?
1: क्या बात कर रहे हैं आप?
2: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे। अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़का भगा के करना चाहते
1: हैं। मेरी बात सुनिए
2: दोबारा, एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
1: हेलो,
2: देखा आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या?
1: नहीं,
2: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के नहीं बकवास। अच्छा, तो फोन मत काटिए, फोन मत करिए, मेरी बात सुनिए। रेखा
3: रेखा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
1: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
3: नहीं, मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से तो नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी।
3: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

बचपन में आपने मौत का कुआं देखा है? अगर आपने मौत का कुआं नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। वेलकम बैक, मैं हूं मिर्ची ईशा और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक ऐसे डेयरिंग सर्कस की जो शायद आप उससे रूबरू नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर्कस को देखें, इंजॉय करें और कुछ नया सीखें, तो आपके लिए आ चुका है फोंटाना। जी हाँ, फोंटाना बाय सर्क्यू ड्यू लिबान आ चुका है। ये सर्कस टेंट में हो रहा है हयात प्लाजा में। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं जल्दी से जाइए, क्योंकि 31 मई तक है ये, एंड ये वेडनेसडे से सैटरडे तक होते हैं। मैं आपको टाइमिंग से रूबरू करवा देती हूँ, क्योंकि टाइमिंग्स एप्ट पता होने जरूरी है कि कहीं आपका शो निकल ना जाए। तो इसलिए टाइमिंग इसकी है, वेडनेसडे को आपको 7 PM to 9 PM मिलेगा, एंड इट्स थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे से लेके सैटरडे तक 4 PM से लेके 6 PM तक मिलेगा, एंड ऑल्सो 7 PM to 9 PM एज वेल। तो आप अगर जाना चाह रहे हैं इस हफ्ते, अपनी जो डेट है ना मार्क कर लीजिए, बच्चों को लेके जाइए, कुछ नया दिखाइए, कुछ सिखाइए, एंजॉय करिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101 इट्स हॉट।

0: इस समय बच्चे एक ही गाना गा रहे हैं, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। भाई इसी का इंतजार होता है बच्चों को, या तो जंपिंग जोन में भेज दो या कहीं प्लेइंग एरिया में, बस ये बच्चों को यही चीजें पसंद आती हैं। भाई बच्चों को आए क्यों ना, हमारे बचपन में ये सब चीजें कहाँ होती थी, हम लोग बस वो मिट्टी के ठेले बना के खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए है टॉय फेस्टिवल। जी हाँ, टॉय फेस्टिवल जो कतर में आ चुका है, सबसे बड़ा कतर का शो, एकमात्र ऐसा शो जहाँ पे भाई एक महीने तक ये आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कतर में मिलेगा आपको ये एक महीने के लिए, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको ये कतर में देखने को मिलेगा। मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, यानी कि DECCC में आपको ये मिलेगा। एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लाइव शोज, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस, शॉपिंग, हर एज ग्रुप के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। देखिए हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं और टॉय फेस्टिवल हमें कभी निराश नहीं करता, और बहुत सी ऐसी चीजें नई ऐड करता है जो हमने शायद कभी एक्सपीरियंस की ना हो और कभी देखी भी ना हो। और वो एक्सपीरियंस के साथ इस साल फिर शुरू होने वाला है टॉय फेस्टिवल। तो भाई बस थोड़ा सा सब्र और समर का टाइम आने दो, जुलाई का महीना आने दो, और एंजॉय करो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
0: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਬਲ ਅਸਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशा ये क्या गाना गा रही है। भाई ये गाना ना एक लड़की के लिए डेडिकेटेड होता है, जब वो अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल में जाती है तब ये गाना एक तरीके से डेडिकेटेड किया जाता है इस लड़की को, कि लड़की की जीवन जो होता है वो भी एक बंद पिंजरे की चिड़िया की तरह होती है, एंड वो अपनी फैमिली के साथ रहती है घर में, एंड देन शी फ्लाइज अवे एंड वो किसी और के घर जाके बस जाती है। भाई छोड़ने छड़ाने की बातें बड़ी इमोशनल कर देती हैं। ये एक फ्रेज बड़ा इमोशनल है जो एक लड़की की ज़िंदगी में होता है। दो जिंदगियां जीती है लड़की एक अलग अलग जगह में। देखिए बहुत इमोशनल पार्ट है। बस इसी के साथ मेरा भी टाइम उड़ने का हो चुका है। जी हाँ, आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है। आप लोगों से मिलूंगी अगले वीकेंड बहुत सारी बातों के साथ और बहुत सारे इवेंट्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल शोज के साथ। बस आपको क्या करना है, ट्यून इन रखना है 89.6 मिर्ची 1 को। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उस पे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Number 10.

यार ये गाना चांद मेरा दिल जैसे ही चलता है मेरे दिमाग में एक और ही गाना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही गाना चल रहा होता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और शायद कुछ करना भी नहीं चाहते। क्या

यू नो कोइंसिडेंस क्या है कि ऋषि कपूर साहब की वो फिल्म हम किसी से कम नहीं, वो गाना, वो फीलिंग, इट फील्स सो फ्रेश इवन नाउ. और यही तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बोलता. हमारे सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स, वो भी उसी फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग ए सन रणबीर कपूर, क्योंकि पापा की विरासत मिली जीन्स में, सरनेम में. लेकिन पहली बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने सीधा पापा का गाना ले लिया. बचना

0: औरों से जुदा।
1: बचना है हसीनों, पूरी एक जेनरेशन नाच रही थी और उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ये तो उनके अंकल ऋषि कपूर का गाना है। एंड देन यू गॉट शाहरुख खान, जिन्होंने किया वही काम जो सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं। उन्होंने ऋषि सर का एक और गाना लिया और उस पर एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी।

0: ओम शांति ओ। 2007 अ ब्लॉकबस्टर, एक गाना जो लगभग 50 साल पहले लिखा गया था पर शाहरुख ने उसे इमॉर्टल बना दिया। ऋषि कपूर इजंट विद अस एनीमोर, मगर बॉलीवुड उन्हें कभी भूलने नहीं देगा एंड आई लव देम फॉर इट, इट विल कीप हिम अलाइव। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 9 पर इस हफ्ते है सैयारा, जिसका दिल मोहित चौहान की उस आवाज में धड़कता है जो एक था टाइगर में सुनाई दिया था। पुरानी रू नया टेक, हमेशा से हमेशा तक। दिस इज सैयारा बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 9।
1: नंबर 9।

0: Suren ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Naveed wala murga.
1: Mirchi murga. Hello.
2: Sir, very good evening. Mein bank se bol rahi hu. Hamari ek scheme aayi hai. Kya aap lena chahenge?
1: Lekin mujhe nahi chahiye.
2: Okay sir. बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद. कहीं का
3: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ. अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन.
4: अ वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी.
4: यस सर.
1: जरा उनसे बात कराइए मेरी.
4: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है. मैं आपकी
1: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
4: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं.
1: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
4: राइट सर?
1: जब मैंने उसको मना किया तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर.
4: सर
1: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
4: नहीं सर, I'm so sorry, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
1: मैं
4: बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को. बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद. कहीं का आजा फोन.
2: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था.
2: यस सर.
1: गालियाँ दे जा रहा है यार वो.
2: सर कौन?
1: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाए जा रहा है.
2: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
1: यार,
2: भी
1: कैसे
2: मैं
1: नहीं होता यार.
2: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर आपके कहने से. हम तो ये
1: फोन आ रहे हैं बराबर, मेरे को गालियां दे रहे हैं
2: सर. मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है. ऐसी गलतियां बाइंदा नहीं होगी सर. बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद. मुर्गा कहीं का.
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरे ही हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार तुम लोग ना
4: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ हंस के बोल दीजिए.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
8: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कम है के?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM Mirchi 1.
13: It's hot.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
14: Number 7.
15: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दा ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and the Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
7: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
8: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तो मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
14: Number 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता, बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे, दैट्स इट, दैट्स हिज सब्सक्राइबर काउंट। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। द सॉन्ग इज इन सॉफ्ट, इट्स नॉट जेंटल, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की ये कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: only on मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
7: खट खट।
8: Who there?
7: बनता।
8: बनता who?
7: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
8: खट खट। Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
2: Mirchi, it's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
9: Number 2.

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा. अगेन नंबर टू दिस वीक. माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट. तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं. बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है. वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म. एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं.
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid for it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है. जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ. एंड देन और फिर एक और कहानी आती है. दिसंबर 5, 2025 धुरंधर. मार्च 19, 2026 धुरंधर 2. रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं. वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो. ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो. सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज. 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर 1 है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर. करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ. एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट. They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1. Number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
3: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
2: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है तो तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
4: साले का खोपड़ी तोड़,

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड. क्लब मिर्ची विद ऑयंतिका एंड डीजे रिचर्ड.

0: पार्टी पीपल, वॉल्यूम फुल, मूड ऑन टर्बो। आज का सीन सिंपल है, नो ओवर थिंकिंग, ओनली ओवर डांसिंग। और नाचने के बहुत सारे रीजंस भी है। पहला वाला रीजन है हमारे डीजे रिचर्ड का जन्मदिन, जो कि 1 मई को आता है, मतलब लेबर उनका और हैप्पीनेस हमारा, जो कि हमें मिलता है क्लब मिर्ची से। थैंक यू सो मच रिचर्ड फॉर मेकिंग आवर वीकेंड्स फैंटाब्यूलस। एंड हियर्स योर लिसनर्स ड्री राइड म्यूजिक, श्री जॉय भट्टाचार्य, सुदीप्त रॉय, डी वी जे अर्व, ए के डी, महेश चौगले एंड शाहिब घोष। विशिंग यू अ हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, एंड मे आई एड माय नेम टू मिर्ची और योंतिका, गिविंग यू लोड्स ऑफ लव एंड अ वार्म हग। इश्क भी जल रहा है और डांस फ्लोर भी चलेगा, सो लेट्स लाइट इट अप।
1: डीजे रिचर्ड, आंधी बन के आ।

0: कुछ आज ग्रूव डिसाइड करेगा. द ट्यून इज टंटनन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर ऑल गोइंग टू गेट लकी टुनाइट.
1: Like the legend of the Phoenix.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी।
2: हाँ जी
3: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए
2: जीती।
3: हाँ सर, सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
2: 40,000 रुपए?
3: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
2: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
3: नहीं तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप देखा है ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
2: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
3: नहीं सर,
2: वर्कशॉप में दी है। कबाड़ी वाला समझ नहीं आ रही मेरे।
3: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
2: जी,
3: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी।
2: हाँ।
3: बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
2: अच्छा,
3: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
2: पागल हो गया है तू क्या?
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा
2: हूँ,
3: 40,000
2: रखा तू नहीं, चाची सर बकवास करे जा रहा है
3: सर। ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
2: हैं? पटरी मैंने को ठेका ले रखा ट्रेन की पटरी।
3: मैं आपको,
2: बात की बात नहीं है मेरी, सुन तो। कोर्ट से लेकर सब सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। आज छोटू जाएंगे ट्राई लेने, रोटू का काम क्या है?
3: अच्छा सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
2: नहीं। सर
3: पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
2: सर सर सर सर सर,
3: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका
2: सर, थोड़ा
3: दिल
2: से मिल गया।
3: मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन,
8: क्लब मिर्ची।

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिखा इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे

महबूब हो या मूड, दोनों को ही टेक केयर करेंगे हम ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंते का। थोड़ा डोप शोप हो जाए अभी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फन लैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो, सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: Our business is our business. None of your business.
2: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
0: Qatar का number one radio station.
3: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
6: On a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
4: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
3: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
6: Cut, cut.
7: Who there?
6: Whom are you?
7: Whom are you who?
8: Aray, whom are you looking for, madam?
7: Cut, cut. Who that?
9: Only on 89.6 Mirchi 1.
10: Mirchi, it's hot.

गाने को गाया है अरिजीत सिंह और अकासा ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर, सर मुझे बात करनी है आपसे। ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
0: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

0: लटकाना।
1: मैं क्या करूं?
2: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए 7 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोलिए।
3: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
2: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
3: अच्छा, वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? आप थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
2: मैंने बीए किया है।
3: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
2: पर क्यों?
3: नहीं, मैं ऐसी पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
2: लेकिन क्यों हील? नहीं, तो आपको पूछना क्या है?
3: नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
2: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
3: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
2: हाँ, ज्यादातर नहीं।
3: हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
2: क्या बात कर रहे हैं आप?
3: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे, अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना। लड़के की बड़ी ख्वाहिश है, बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़का भगा के करना चाहते हैं।
2: कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए
3: दोबारा। एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
2: हेलो,
3: देखा आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट नहीं लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या?
2: नहीं,
3: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के अच्छा फोन मत काटिएगा, फोन मत करिए, मेरी बात सुनिए। रेखा
4: रेखा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
2: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
4: नहीं, मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी।
4: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन,
11: इट्स हॉट।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: Follow me up, cho-cho-cho. Sin anime in the coming at all.
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: Mirchi Stories.
3: Bas 24 ghante hi rahengi.
4: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
5: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाउ। कॉल नाउ 707076878।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन,

के बिना भी पार्टी चलती है। क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम। क्यों?

Love Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi or Yontika. आप बोलो या ना बोलो, groove and beats यहाँ पे बोलती है non-stop. And अगर आप सोच रहे हो कि आप break लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. तुम मेरे ना हुए बट दिस प्लेलिस्ट डेफिनेटली इज, एंड फॉर दैट क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करेंगे नॉनस्टॉप.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: खट खट अखबार
2: अखबार हु
1: अरे अखबार बता दिया है बार बार नहीं ना बता पाएंगे
2: खट खट हु दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: Richie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: Mirchi Helpline, what is the question?
1: ये पानी पूरी वाला हर बार सूखी पूरी का एक्स्ट्रा चार्ज करता है, क्या करूं?
2: अरे गोचू, पानी पूरी गीली होती है, तू सूखी मांगेगा तो वो सुखाने का एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना।
3: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। 89.6, 89.6.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में रात के 8 की पारिंग विद क्लब मिर्ची।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड
4: क्लब मिर्ची।

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो, रेडियो पे तो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मई, हिज बर्थडे वाज ऑन 1st, सो हे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

के नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो अंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La vidvala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो,
4: उसको पेरों को पीछे लगा के उसको को आगे करो।
3: हेलो,
5: हाँ जी,
3: ये भाई साहब, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
5: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पेरो है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
4: अरे आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने, दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
5: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
5: ठीक है,
3: ठीक है। इसमें मेरी अभी तो आप लिखी
5: है, मॉडल
3: मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
5: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किस तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा सैपा खत्म, मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी कुछ था।
5: हेलो,
3: हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
5: अजय शर्मा।
3: अजय जी, ऐसा है मेरे पास 28 गाड़ियाँ हैं इस वक्त।
5: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
5: नहीं, उसी
3: मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियाँ गाजियाबाद से उठाई हैं।
5: अच्छा।
3: 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
5: चोरी की है क्या?
3: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
5: पहले मुझे देखना पड़ेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं।
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
5: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
5: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
5: अरे सर ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुके।
4: हाँ, अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
5: शाम को बताता
3: नहीं मैं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
5: क्या कर रहा हूँ, शाम को फोन करके बताऊंगा।
3: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियाँ है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
5: तो मैं आपको देखना चाह रहा था, ऐसे कैसे
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM Mirchi 1.
12: It's hot.
13: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go
14: on a ride.
15: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard. Only on

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो, सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen.

हर बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोटिका। आई जस्ट माइट प्ले दर्द डिस्को नाउ फॉर यू। लेट्स गो।

0: ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है बस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेसलाइन्स टू गुड

नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: emergency helpline?
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, थक जाता हूँ, क्या करूँ?
1: Oh man, ये तो बहुत टायरिंग है, तू कैब चलाना छोड़ दे भाई, and do some other job.
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: मनोज जी।
2: हाँ जी
3: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए
2: जीती।
3: हाँ सर, सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रूपए देने के लिए तैयार है ये।
2: 40,000 रूपए?
3: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रूपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
2: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
3: नहीं तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रूपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
2: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज की देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
3: नहीं सर,
2: शॉप में दी कबाड़ी वाला समझ नहीं आ रही मेरे।
3: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
2: जी,
3: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी, बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
2: अच्छा,
3: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट में आ रही है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
2: पागल हो गया है तू क्या?
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 40,000 सर ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
2: हैं? ठेका ले रखा ट्रेन की पटरी।
3: मैं
2: आपको बात की बात नहीं है मेरी, सुन तो
3: मैं
2: कोर्ट से लेकर सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। छोटू जाएंगे पाई लेने, रोटी पर काम क्या है?
3: अच्छा सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
2: नहीं, सर सर
3: सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड
2: सर। सर सर, सर
4: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मुर्गा बन गया है आपका। मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1.
11: It's hot.
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
13: on a ride.
14: Club Mirchi with Oyun Deka and DJ Richard.

एमेच्योर एंड मैच्योर यो देगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है, और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे DJ Richard Official, that's him, and Oyontika, AYNTIK, that's me on Insta and Facebook.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: Bas 24 ghante hi rahengi.
3: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वह विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, it's hot.
6: Ladies and gentlemen,
5: on a ride.
0: Club Mirchi.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है, और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ओयो देगा, AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
7: on a ride.
0: Club Mirchi.

की बातें पीने बाद पर ड्राइविंग पीने के बाद एकदम नहीं. नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. हैव फन विद रिस्पांसिबिलिटी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका डांस फ्लोर पे आके बोलेंगे एक साथ बचना ए हसीनो.

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: It's Chicago, baby.
1: और इसी हाई नोट पे वॉल्यूम थोड़ा कम, यादें फुल लाउड लेके एग्जिट मारेंगे. लेकिन जाने से पहले साइन ऑफ ट्रैक आपके लिए Chicago baby. We'll see you again next week. Until then, you take care of yourself. बस पॉज होनी नहीं चाहिए आपकी डांसिंग. Catch you on the next drop.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरी आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूं?
1: अरे तो आवाज को अपना कंफर्म टिकट दिखाओ, उसको बोलो खड़ी हो जाए।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए रात के 10, लेकिन पार्टी अभी बाकी है. Keep enjoying Club Mirchi only on Mirchi 1. It's hot.
2: Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and wait for the no smoking sign.

पार्टी पीपल, वॉल्यूम फुल, मूड ऑन टर्बो। आज का सीन सिंपल है, नो ओवर थिंकिंग, ओनली ओवर डांसिंग। और नाचने के बहुत सारे रीजंस भी है। पहला वाला रीजन है हमारे डीजे रिचर्ड का जन्मदिन, जो कि 1 मई को आता है, मतलब लेबर उनका और हैप्पीनेस हमारा, जो कि हमें मिलता है क्लब मिर्ची से। थैंक यू सो मच रिचर्ड फॉर मेकिंग आवर वीकेंड्स फैंटाब्यूलस। एंड हियर्स योर लिसनर्स ड्री राइड म्यूजिक, श्री जॉय भट्टाचार्य, सुदीप्त रॉय, डी वी जे अर्व, ए के डी, महेश चौगले एंड शाहिब घोष। विशिंग यू अ हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। एंड मे आई एड माई नेम टू मिर्ची और योंतिका, गिविंग यू लोड्स ऑफ लव एंड अ वार्म हग। इश्क भी जल रहा है और डांस फ्लोर भी चलेगा, सो लेट्स लाइट इट अप।

कुछ आज ग्रूव डिसाइड करेगा. द ट्यून इज टंटनन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर ऑल गोइंग टू गेट लकी टुनाइट. Like the legend of the Phoenix.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो, सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: Club Mirchi.

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो और इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
4: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उस पे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
3: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड,
0: क्लब मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
4: 89.6
5: FM Mirchi 1 It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go
7: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दोस्ती कहीं कुछ सुले मैडम नो सॉरी नो थैंक यू
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए
3: तो मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा
4: खूब मिलेगा कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
7: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
8: वी आर गोना गो

इश्क बिना भी पार्टी चलती है, क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका आपके साथ, बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम।

लव क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. आप बोलो या ना बोलो, ग्रूव एंड बीट्स यहाँ पे बोलती है नॉन स्टॉप. एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप ब्रेक लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कट
2: अबे कौन है?
1: उत्तपा।
2: उत्तपा कौन?
1: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
2: खट खट, हो दैट।
3: Only on 89.6 Mirchi One. Mirchi, it's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
3: on a ride.
0: Club Mirchi.

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello? Mirchi Helpline?
2: Yeah. Arre bolna mamu, Mirchi Helpline. What is the question?
1: Sir, bike chalate chalate machhar muh mein chale jaate hain. Bahut problem hoti hai. Kya karu?
2: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है तो तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
3: साले का खोपड़ी तोड़ साले का।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है टीचर रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो, रेडियो पे तो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मे, हिज बर्थडे वाज ऑन फर्स्ट, सो हे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

इनके नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो अंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Navid bala murga. Mirchi murga.
2: हेलो,
3: उसको पेरों को पीछे लगा के उसको को आगे करो।
4: हेलो,
2: हाँ जी,
4: ये भाई साहब, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
2: कौन सी गाड़ी आपकी?
4: पेरो है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
3: अरे आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने। दोनों आ गए।
4: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
2: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
4: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
2: ठीक है,
4: ठीक है। इसमें मेरी अभी तो आप लिखी
2: है, मॉडल
4: मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड,
3: आराम प्रकार से गाजियाबाद से पत्थर उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
2: 2000।
4: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किस तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म। मैं नहीं जानता कहाँ की गाड़ी थी, कुछ था।
2: हेलो,
4: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
2: अजय शर्मा।
4: अजय जी, ऐसे मेरे पास 28 गाड़ियाँ हैं इस वक्त।
2: अच्छा, आपकी अपनी है?
4: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
2: उसी।
4: मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियाँ गाजियाबाद से उठाई हैं। अच्छा। 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
2: चोरी की है क्या?
4: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
2: देखना पड़ेगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
4: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
2: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
4: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
2: बात करूंगा ना आपसे।
4: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
2: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
4: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुकिए।
3: अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
4: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
2: शाम को बताता
4: नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
2: क्या करूँ मैं, शाम को फोन करके बताऊँ।
4: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियाँ है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
2: तो मैं आपको देखना चाह रहा था।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
7: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो, सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची 1। इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
12: ऑन अ राइड।
0: With Oi Hontika and DJ Richard. Only on-

हर बार दिल टूटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। आई जस्ट माइट प्ले दर्द डिस्को नाउ फॉर यू, लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और ये
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोर्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोर्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen.

ready for this. मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेसलाइन

0: voices in my head go.
1: हैंडल कर पाओगे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिखा आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची.

फेंक लगे, देख तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे।

नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: Mirchi Helpline, what is the question?
1: ये पानी पूरी वाला हर बार सूखी पूरी का एक्स्ट्रा चार्ज करता है, क्या करूं?
2: अरे गोचू, पानी पूरी गीली होती है, तू सूखी मांगेगा तो वो सुखाने का एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। 89.6
4: Mirchi

0: Voices in my head go.
1: Voices in my head go. Voices in my head

फ्यूचर एंड मिर्च योर योर देगा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है। और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड योर योर देगा AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो, सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
8: Qatar का number one radio station.
9: 89.6
10: FM, Mirchi 1. It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
12: on a ride.
13: Club Mirchi.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो। देखा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ओयो देखा AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड

प्यार पे मारी जावा क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल देगा फिलहाल तो शरारत लेवल हाई इनोसेंस ऑन एयरप्लेन मोड लेट्स गो वी हैव शरारत

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अजय देवगन, फर्ज करते हैं माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर इज केआरके, देयर इज करण जौहर एंड देयर इज काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
4: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
3: Because that's the game. आपको दोनों को तो बचाने ही पड़े.
4: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
3: ऐसा ही हूँ मैं.
4: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
3: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: कौन है?
6: स्टेन.
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को. मैं नहीं देता पैसे, जाओ.
5: खट खट, हु दैट?
7: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
7: ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची.

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

ज्यादा कम यादें फुल लाउड लेके एग्जिट मारेंगे, लेकिन जाने से पहले साइन ऑफ ट्रैक आपके लिए शिकागो बेबी, वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, एंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बस पॉज होनी नहीं चाहिए आपकी डांसिंग, कैच यू ऑन द नेक्स्ट ड्रॉप, टाटा।

इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विवाह करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।